छिल अलूरी चटणी साध न पुजे लख लख मेवा लाख भगत जगत विची लिख न गए गुर सिखी देवा लाख भगत जगत विची

परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तेरा तुफंगा नु भी पीर गया। साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है, सैथी भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तरवार है, के तू ही तीर है, तू ही बरशी है, तू ही तबर है, तू ही

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की भुआ लगते सन। संगो शाह युद्ध करदिया शहीद होया तो सतगुरु जी ने उस वेले नजारा थक के संगो शाह

प्यार करने वाले अपने हथियार लेके अपने शस्त्र लेके आनंदपुर साहब नू चल पे माझे ते मालवे।

अगले दोनों पैर चुक ले ने घोड़ा जिन्हें दोनों पैर अगले चुके हुए ने भाई बजीतर सिंह ने एक हाथ नाल घोड़े की लगाम फड़ी दूसरे हाथ दे नाल ओ नागनी फड़ी हुई है और जोर दी वगा के एक जकारा छड़ के ओ नागनी मस्त साथी दे

एक परमेश्वर की आराधना करो तो फिर देखो तुहाडी किस तरह जित होवेगी। ते कहंदे ने एही उपदेश साहिबां ने सारयां नूं

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पैसा भाई गुरदास जी कहिंदे ने

0: क्यों कर में ले चिथड़े हीरा लाल अमोल पलिता।
1: भगत भगत जग वजी, सारे जगत विच भगत भगत होने लग पे है। क्यों? चाहो चकां दे विच चमरेटा पाणा गंडे राह विच।
0: काम की है पाणा कहिंदे ने पैर दियां जुतियां गंडदे हन चुराहे विच बैठे,
1: पर ख्याल करना ये केवल जुतियां नहीं गंडदे, ये टुटे लोकां दे मन गंडदे हन।
0: पाणा गंडे राह विच कुला धर्म टोए टोर समेटा, कुल दा धर्म की है काम की है। टोर पशु डंगर मर जाना, खाल उतार के जुतियां बनानी है। रविदास जी कौन ने ज्यो कर मैले चिथड़े, मैले कपड़िया दे विच हीरा लपेटिया हुआ है। ज्यो कर मैले चिथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा, अमोल जिदा मुल कोई नहीं है, ऐसा हीरा है भगत रविदास। फिर कर दे की ने
1: चौवरना उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत।

प्रचलित अचरज अमिटा। भगत जी ने भी कसीरा कौडियां दा कढ लिया। हुण कई ख्याल देंदे ने कि अज भगत रविदास जी ने पंडित जी नूं दिता ते पंडित जी ने अगे दान होके आ। एक गल मैं तुहाडे समक्ष रखदे आ, भाई साहब भाई गुरदास जी इस गल नूं स्पष्ट करदे ने, कद कसीरा सौंपिया रविदासे गंगा दी पेटा। ओए पंडित ते इन्हां शूद्रां दे पछावे तो डरदे सन, उहदा दान किवें फड़ लिया? गल इह नहीं है। कई बार असी बाणी दे अर्थ करदे करदे निर्थ भी कर जाने आ, लिखत नूं गलत करके सुना दिंदे आ। कई बार ऐसा हुंदा कि गल कुछ हुंदी है, सुना कुछ स्टोरी बना के दिंदे आ। ना भाई, गल ओनी करिए जिनी बाणी दे विच अंकत है, क्योंकि बाणी कसवटी है। इतिहास भी वह सुनना ते सुनाना चाहिए जो गुरबाणी की कसवटी ते पूरा उतरदा होवे। जो गुरबाणी की कसवटी ते पूरा नहीं उतरिया, क्षमा करना, सुनना चाहिए ते ना सुनाना चाहिए। कद कसीरा सौंपिया, साफ अर्थ ने कि भगत जी ने आप कसीरा दिता रविदासे गंगा दी भेटा। लगा पूर्व अबीच दा डिठा चलित अचरज अमेटा। फिर कहिंदे ने रविदास जी, कहन लगे मां गंगा, मैं इन्हां दी तरह तेनू दान नहीं देना, मैं दान तां दियांगा जी आप हथ कढ़े। भाई साहब कहिंदे ने कि मात गंगा नूं हथ कढ़ना पिया। ले आ कसीरा हाथ का।

दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारिया दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी, एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने शब्द

बड़े बड़े वड्डे महल ने पर इना महलां दे विच रहिंदा कौन है सिर्फ उस परमेश्वर दे प्यारे रहिंदे ने

दरवाजा खुलिया तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी महल दे विच दाखल होए हां। कुछ आत्मक मंडलां वाले लोग बैठे ने, एक तख्त पोश है, उस महल का फर्श मानो हजारा तारे जड़े हुए ने, छत मानो लखा ही चंद्रमा जड़े हुए ने, तख्त पोश भी सूक्ष्म शैदा बने हैं। इस तख्त पोश से एक दिव्य मूर्ति विराजमान है, जिदे विचों करोड़ा सूरजां दी रोशनी निकल रही, पर ए रोशनी गर्मी नहीं देंदी, जीवन दान देंदी। ओ दिव्य मूर्ति जिदा कोई अंग नहीं, कोई रंग नहीं, पर फिर भी सब कुछ है। तेजस्वी पुरुष दे नाल दिव्य मूर्ति दे सामने असी भी होए हैं। तेजस्वी पुरुष ने सिर झुकाया, दिव्य मूर्ति विचू आवाज आई, हे प्यारे नौ जामी धार के और अनेक कष्ट सहार के, जो तैं दुखी सृष्टि पर परोपकार कीता, मेरी प्रसन्नता दा कारण बने है। हे प्यारे तू हुण मात लोक विच जा, देव मूर्ति कौन है जिन्हों आपां अकाल पुरख कहने, तेजस्वी पुरुष दुष्ट दमन कलगी तर पातशाह। जदू ए किया, ऐ दुष्ट दमन ऐ प्यारे तू हुण मातलोक विच जा, ते कलगी तर पातशाह आप कहंदे ने कि उस वक्त ए हुक्म सुन के ते साडा मन जिहड़ा सी ओ मातलोक विच आण नू मन्या नहीं, जिहा कि आप साहब जी लिखते ने, चित न पयो हमरो आवन के, चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में। क्या अकाल पुरख तेरे तू विछड़न नू चित नहीं करदा, अपने चरणा दे नाल ही लगा रहन दे।

0: ज्यों त्यों प्रभाव को समझायो इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे नहीं संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रहांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संस

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरे आ, किथे जा पहुंचे आ, गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले, आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने, अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनास्पति खिड़ गई, मानो आज दुनिया दा पार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ कड़ियां बाद हर पासे खबर फैल गई के माता गुजरी जी दे ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म ले है। ते कलगी तरपातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती पे होया। मुरपित पूर्व

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारा संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदे, अपनी गल दे नाल लगा लैंदे अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदे। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुन दे साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

परमात्मा अकाल पुरख की उस तत वड़ियाई दसी है। भगत कबीर जी कहते ने हे भाई आ उस सतगुर की पूजा कर उसकी आरती इंज गायन कर जिमें के ओ परमात्मा अकाल पुरख वड्डा है ते उसनू याद भी वड्याइयां दे नाल कर। हुण सतगुर की पूजा की है, सतगुर की आरती की है। प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इन्हां शब्दां दे अर्थ बड़े सुंदर कीते ने। लिहो आरती हो पुरख नरिंजन सतगुर पूजो पाई। भाई गुरु की आरती, सतगुर की आरती, गुरु की पूजा, गुरु के हुक्म मुताबक चलना, गुरु के दसे मार्ग से तुरना, जिमें गुरु चलावे उवें चलना, ते गुरु के बाणे विच गुरु की रजा विच रहना, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗਗਨ ਮੇ ਥਾਲ ਅਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ ਰਹਾਉ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ अगले तुकां दी विचार अज आरंभ करिए कि सतगुरु जी ने सानू इस विच उपदेश कैसा दिता है ते भगत कबीर जी की कह रहे ने। इधर भगत कबीर जी ने बाणी विच कुछ आरती दे वचन कहे ने, इधरों धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने आपां दोनां नूं सरवण करना है कि उस मालक दी पूजा, उस मालक दी आरती किवें कीती जा सकदी। सहस तब नैन नन नैन है तोए, कौ सहस मूरत नन्ना एक तोई। सहस तब नैन नन नैन है तोए, हे परमात्मा तेरे सैकड़े अनेक ही नैन हैं, हजारा की गिनती विच तेरे नैन हैं। सहस तब नैन, हुण फिर अगे लफज आ गए है सहस तब नैन नन नैन है तुए। हे परमात्मा तू प्रगट भी है ते तू गुप्त भी है। जिवें तेरे हजारा नैन हन ते अकाल पुरख होण दे नाते तेरा कोई भी नैन नहीं है। हजारा तेरिया अखां हन लेकिन तेरी कोई भी अख नहीं है। सहस तब नैन नन नैन है तुए, कौ सहस मूरत नना एक तोई। एक पासे कहिंदे ने तेरियां सहस मूरतां ने हजारां, पर हे अकाल पुरख जे तेरी वड्याई वल जुड़िया जाए तेरी कोई मूरत नहीं है, क्योंकि तू मूरत तो रहता है, तेरा कोई चिन्ह चक्र नहीं है, तेरा कोई आकार नहीं है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने

सब में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्व व्यापक है, सर्व व्यापी है, हर थां रमिया होया है, इसी तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहिंदे सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत लाई है। तिस कै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे तो फिर की हुंदा, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावे सो आरती होए। हे मेरे मालक, फिर जेड़ा तेनू पाज है, जेड़ा तेनू चंगा लगे, जिस ते तेरी कृपा हो जाए, ओदी आरती आप मंजूर कर ले। ओदी आरती सुधर ते प्रवान हो जाती है, जो तिस भावे सो आरती होए। भाई आरती मंजूर की दी है, जेड़ा ओदे हुक्म विच चलदा है, जेड़ा ओदी रजा विच चलदा है, जेड़ा ओदे कहे मुताबक चलदा है, जेड़ा ओदी आग्या विच रहिंदा है। बस आरती मंजूर उसे दी होनी है। असा अरदास करनी है कि हे मेरे मालक, तू कर कृपा असी तेरे दसे मार्ग ते चल सकी। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਢੰਗ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, सुन संध्या तेरी देव दिवा कर अदपत आन समाई। सुन संध्या तेरी देव दिवा कर, सुन मीन्स सुंझ, किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं, कोई भावना नहीं, माया माया का प्रभाव नहीं, माया तो रहत, माया तो निर्लेप। सुन सुंझ, जिथे किसी प्रकार की कोई इच्छा प्रगट नहीं हो रही, सुन।

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनाने वाले परमात्मा, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जति जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगति की, सिद्ध समाद समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी सरन विच आ पाए, तेरी सरन विच आ डिगे, तेरे चरणों नाल लग गए कि हे मेरे मालक असी तेरा अंत नहीं पा सके। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लिहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, ते तू ही उस लैण ते ना तुरी, तू ओ आरती करनी है जेड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुर पूजो पाई। आ भाई अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों नाल लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठाडा बरमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बर्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखया जाए, वो अलख है जो लखया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते ने, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजारा, जोत लाए जगदीश जगाया, पूजे पूजन हारा। कहते ने, हे मेरे मालिक, तेरी आरती दी समझ कोई विरला ही जान सकता है, किसे विरले दी ही समझ ए गल आ सकती है, कोई बूझे बूझन हारा कोई इस गल नू बुझ सकता है। हर किसे दे बस दा रोग नहीं कि तेरी इस आरती नू समझ सके। हुण कहिंदे ने, ख्याल करना, मैं कल भी जिक्र कर रहा सा, तीन चार चीजां दा दीवा बालन लई तीन चीजां दी लोड़ हुंदी है, तेल दीवा ते बत्ती। पर इत्थे भगत जी कहिंदे ने, हे मेरे मालक, तत तेल नाम की आबादी, मैं जिहड़ा तेल पाया ना इत्थे, तत दा भाव है ज्ञान। तत तेल, मैं ज्ञान रूपी तेल पाया, नाम की आबादी, कहते ने जिहड़ी विच वट्टी है ना, वह मैं नाम दी पाई है, ते इस शरीर नू दीपक बनाया। ध्यान देना, हुण इत्थे दीपक आटे का नहीं है, मिट्टी का नहीं है। कईयां ने अपनी समर्था मुताबक स्टील का, कोई चांदी का, ऐसे इत आदक दीवे बना लेंदे ने, पर भगत कबीर जी कहंदे ने, हे मेरे मालिक, मैं ज्ञान दा तेल पाया, नाम दी वट्टी पाई है, इस शरीर दे अंदर दीवा बना के कीता की है, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजाला। फिर मैं सतन नू दीपक बना लिया, ते हे मेरे मालिक हुण तू कर कृपा मेरे ते, जोत लाए जगदीश जगाया। ਇਹ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਜਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੇਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
दीवा अपने आप कभी नहीं बलिया। दीवे विच एक चीज की भी कमी हो जाए दीवा नहीं बलना। जब तक उन्हें तिना चीजा ना मेलना हो दीवा बत्ती तेल हूं तिना बत्ती कढ़ दियो तेल ते दीवा रह जाए दीवा नहीं बलना। हूं बत्ती विच रख के तेल ना पाओ बत्ती ते दीवा हो दीवा फिर भी नहीं बलता। जे असी कही बत्ती ते तेल का संबंध जोड़ दीए दीवा ना हो दीवा फिर भी नहीं बलता। तिने चीजा ना मेल है पर जे तिने चीजा होन दीवा भी हो बत्ती भी हो तेल भी पा दिता जाए दीवा फिर नहीं बलता। बालन वाला चाहिदा है। भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे मालिक ए मेरा दीवा ता बलना है ए जोत ने उजियारा ता करना है जब तक तेरे नाल संबंध नहीं जुड़ना। तेरे नाल संबंध जुड़ेगा तो यह दीवा बलेगा। कर कृपा जोत लाए जगदीश जगाया बुझे बुझना। कोई विरला इस गल नूं बुझदा है कि यह जिहड़ी जोत है मालक नाल रल के जगाई जा सकती है। अगे भगत कबीर जी कहते ने पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पानी पंचे शब्द अनाहत वाजे। ए अनहद बाजी जो मेरे अंदर एक रस एक तार वज रहे क्योंकि मालिक तेरी कृपा होगी। पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग बाणी जिमें बाणी विच जिक्र आउंदा है पंचे शब्द बजे मत गुरमत वडभागी अनहद बजे। अनहद यह जिहड़ा अनहद नाद है यह अंदर वजदा है। ते भगत कबीर जी कहते ने मालक तेरी कृपा मेरे ते हो गई पंचे शब्द अनाहत वाजे एक रस एक तार वज रहे ने। ते ए पंच वाजे केड़े ने पंच साज केड़े ने तंती साज ते साज संगत चमड़े नाल मड़े हुए साज ते कुछ धातु दे बने साज ते कुछ कड़ा इत आदक ते कुछ फूक मारन वाले साज। ये पंच प्रकार की साज पंचे शब्द जिन्होंने कहते पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार। हे मेरे मालिक तू मेरी ए आरती प्रवान कर लै मैं ते तेरी इस प्रकार आरती सही समझी है। ते साध संगत कल जिक्र चल रहा सी उस आरती का मन बनिया किसनू संपूर्णता विच कीता जाए। फिर तन्ना जी का भी जिक्र बड़ा सुंदर चलिया। सैन जी ने बड़ी सुंदर गल की धूप दीप कृत साज आरती। सैन जी कहते ने इस आरती नू करन वास्ते चार चीजा की लोड़ है धूप दीप कृत साज आरती। धूप अगरबत्ती दीवा ते थाल घ्यो पा के जिन्हू जलाया जाता है ये चार चीजा जिन कहते ने कठिया हो जान फिर यह दीवा बाल के आरती की जाती है। लेकिन यह जिहड़ी आरती हिंदू मत अनुसार होंदी है उहदा कुछ जिक्र मैं अज पढ़ रहा सां। इस प्रकार मिलिया कहिंदे ने चार वरी यह जिहड़ा थाल है ना चरणा ते कमाया जाता है चार वरी ते दो वरी यह नाभी तक इस थाल नूं कमाया जाता है ते उपरंत एक बार मुंह ते मुख ते कमाया जांदा है ते साध संगत उस तो बाद सत वार पूरे शरीर नूं बार बार कमाया जांदा है। ते जेकर ऐसा मिलिया कि इहदे विच थाल विच जिहड़े दीवे ने एक तो लैके सौ तक रखे जांदे ने। इह नहीं कि एक दीवा एक नहीं एक तो लैके सौ तक इहनां दी गिनती है इह उहनां दी मर्यादा है। पर सतगुर कहण लगे भाई तू ऐसा दीप बाल जिहड़ा बुझी ना हमेशा जगदा रहे इसलिए उन्होंने साड़ी चोली विच ए दान पा दिता। हुण भगत तन्ना जी की कहिंदे कहिंदे ने हे मालक परमात्मा गोपाल तेरा आरता हे गोपाल मालक अकाल पुरख मैं तेरे अगे आरता इसलिए कर रहे हैं कि मैं तेरे कोल कुछ डिमांड मंगनी है मैं तेरे कोल कुछ मंगना चाहना हां। हुण लफज आरता क्यों आया है
क्योंकि अगे लफज आरती चल रहा है। यह आरता क्यों है? यह ना समझ लेना एक काव रस है। जिवें कवि कोई काव लिखता होवे ना, उन्हें अपने फिक्रे नूं लवाना हुंदा है। हुण अगे लफज की है? गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता। क्योंकि लफज तां पूरा हुंदा है। ए दास तन्ने वालों हे मालक तेरे अगे बेनती है। गोपाल तेरा आरता किस लई? जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता। हुण एक गल मैं तुहाडे समक्ष ए रखना चाहना, भगत तन्ना जी ने इत्थे विश्वास दस्से है भई जेड़े तेरे परमात्मा भगती करदे ने, मैनू यकीन है, मैनू भरोसा है, मैनू अकीदा है, तेरे ते फेत है, तू उहनां दे कारज आप सवारना है। तिनके काज सवारता। हुण कहिंदे ने मेरियां मंगां की ने? सतसंग ध्यान देना। दाल सीता मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। हे परमात्मा अकाल पुरख, मैं तेरे दर तो आरता करके ए दात मंगदा हां, दाल सीधा मांगो कियो। दाल तुसी सारे जानदे हो, जिन्हों दाल ते रोटी दा सेंस दुनिया दा सब तो वड्डा है। कहिंदे ने दाल ते सीधा कहिंदे ने आटे नूं। दाल सीधा मांगो कियो, हे परमात्मा घ्यो भी दे। हुण इह जे तीन चीजां तू मैनू दे दे, हमरा खुशी करे नित जीओ, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। साध संगत इह ते बिल्कुल सियाणी गल है। उह जिहदे घर खाण नूं ना होवे, उहनूं भगती कित्थे सुझदी है? उहदा मन कुड़दा रहिंदा है, कहिंदा हे परमात्मा एवें संसार विच भेज दित्ता ही, खाण नूं ते दित्ता कुछ नहीं। जे कुछ खान नूं देवे तो तेरी भगती करा, हुण खान नूं ते लभदा नहीं, तेरी भगती की करा? इसलिए भगत तन्ना जी कहिंदे ने हे मालक तेरी भगती भी तां होवेगी, मैनूं ए चीजां दे, दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। हुण भगत जी कहिंदे ने इत्थे ही बस नहीं, हे परमात्मा कुछ मंगा होर भी ने। पनिया छात्र निका, अनाज मंगो सब सिका। पनिया दा पाव है पैर। हे मेरे परमात्मा, मैनू पैरां दी जुत्ती बड़ी आला चाहीदी है। पनिया छादर निका, हुण छादर कहिंदे ने तन दे कपड़िआं नूं। पैरां दी जुत्ती अच्छी होवे, तन ते कपड़ा अच्छा होवे, सिर ते पग सोहणी होवे, ते वेखण वाला भी कहिंदा कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी विच आया है। क्योंकि अड दी दुनिया दी निगाह सिर तो लैके पैरां तक जांदी है। ते भगत कहिंदा हे परमात्मा, जिहड़ा मैनू वेखे वह मैनू वेखदिआं तेनू याद करे, मैनू वेखदिआं तेनू याद करे। जे परमात्मा दा भगत ऐसा है ते परमात्मा क्यों? पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। पैरां दी जुत्थी अच्छी होवे, तन दे कपड़े अच्छे होण, ते अनाज सोहनी धरती वाई दा मैनू चाहिदा है। अनाज भी इहो जिहा ना होवे, अच्छी धरती वाई दा। अनाज मंगो सत सीका। फिर कहिंदे ने गौ पैंस मंगो लावेरी, इक ताजुन तुरी चंगेरी। हे मेरे मालक, एक गौ चाहिदी है, एक पैंस चाहिदी। पर सजल सुरी, सजल सुई हुई, कहिंदे ने इहो जी मैनूं दे देवे, गऊ पैंस मंगो लवेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। तुरी कहिंदे ने अरबी घोड़ी। तेरे भगत नूं घोड़ी भी चाहीदी है असवारी वास्ते। बस हुण इंज समझ लो, उस वेले घोड़ियां सन, इस वेले आ मोटरां कारां। कितने कितनियां महंगियां, कितने कितने नाम ने उन्हां दे, जिहड़े गिणे नहीं जांदे। पर उस वक्त अरबी घोड़ी सब तो आला गिणी जांदी सी। गऊ पैस मंगो लवेरी, इक ताजुन तुरी चंगेरी। अंत विच कहिंदे ने हे परमात्मा, आ डिमांड ध्यान नाल सुनी। कर की गेहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी।
भगत ने परमात्मा नू आरती करके खुश कर लिया, इंज कह लो भगती करके खुश कर लिया। जदों हुण परमात्मा खुश है, परमात्मा कहिंदा भगता जो मंगी जाएगा दई जावांगा, क्योंकि उन्हें अपने वस विच कर लिया। कहिंदे ने हुण जिहड़ी डिमांड अज सामने रखी कि अंत विच मैनू घरवाली चंगी चाहीदी है, क्योंकि घरवाली का बहुत साथ हुंदा भगती विच। जे घरवाली ना चाहे तो खिमा करना भगती बहुत औखी है, बहुत कठिन है। ए जिन्ने भी भगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने उन्हां दीआं घरवालीआं दा साथ है, क्योंकि घरों साथ होना जरूरी है। इसलिए घर की गिहन चंगी जन तन्ना देवे मंगी, तन्ने ने मंग के लई। हुण अगे चलिए, भगत कबीर जी इस आरती नूं कहिंदे होए कह रहे ने कि हे परमात्मा, मैं तेरी आरती इसे लई कीती है कि मैं भी ग्रस्ती हां, मैं भी बाल बच्चरदार हां, मैनू भी कुछ चाहिए। हुण परमात्मा कोलो की मंगे है, भगत कबीर जी बड़ा सुंदर कहिंदे ने, आओ सरवण करिए। सौरठ भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। भगत जी ने गल बड़े कमाल दी रौंगी, कहिंदे ने हे परमात्मा अकाल पुरख, आला फाण अपनी माला, भुखिया तो भगती नहीं होंदी, क्योंकि मन रजा होवे तन रजा होवे भगती भी फेर ही होंदी है। भुखे तो भगती नहीं होंदी, फड़ ले अपनी माला, मैं नहीं तेरी भगती कर सकता। सोरठ भूखे भगत ना कीजे, ये माला अपनी लीजे फड़ माला। पर कहते नहीं मेरी मंग कैसी है, हाउ मांगो संत में रहना, मैं ना ही किसी का देना। कहते नहीं मैं तेरे को मांगना संतां दे चरणां दी धूल, ये मेरे मस्तक ते लग दी रहा है। हाँ मांगो संत नूं रहना, पर नाल मैं ये भी कहना मैं ना ही किसी का देना, मैं किसी का देना ना होवे। कई बार होंदा है कि बंदा भगती ते बैठा होंदा है, लैण वाला बूहे ते आ खलोंदा है, वह बाहर बूहा खड़का रहा होंदा है, खोल पई बूहा मेरा देना मैनू दे, कहिंदा हुण कित्थे मन लगदा है, नहीं लगदा। मैं नहीं किसी का देना, मैं किसी का देनदार ना होवा, किसी का देना ना हो। फिर कहते नहीं हे परमात्मा यह किवें हो सकता है, ऐसी गल किवें बन सकती है। मां तो कैसी बने तुम संगे, आपन दे हो तो ले वो मंगे। माधो माधो कहते ने हे माया दे मालक, हे माधो अकाल पुरख, कैसी बने तुम संगे, ए तेरी मेरी बन किवें आ सकती है, तेरा मेरा संग किवें रल सकता है। हुण संग किस लई करना है, आप ना देवो तो लेवो मन। जे परमात्मा तू मैनू ना देवी ते तेरा मेरा इन्ना प्यार होना चाहिए, तेरा मेरा इन्ना संग होना चाहिए, जे तू ना नहीं देवे मैं आपे मंग के लैं। इसलिए भई आओ, यह है परमात्मा की आरती, उन्हू बंदगी करके रजा लो, वह नहीं ना देंदा आप मंग लो, क्योंकि साडा वह संबंध प्यो पुत्र का है। पुत्र ने कभी पिता को मंगण लई ग्रेस नहीं किया, पत्नी ने पति को मंगण लई कभी ग्रेस नहीं किया, हक नाल मंगदे ने कि हे परमात्मा मेरा तेरे ते हक है, क्योंकि मैं तेरा पुत्र। इसलिए आओ पहले हक बनाइए फिर मंगना शुरू करिए। हुण भगत जी कहिंदे ने मैं की मंग रहे हां,

पारिक अनक लख बरिया अन थोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत बारिक बपुरे की सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए।

वणजकरन लगी 24,000 श्वास रोज दे साडे खर्च होंदे हन असी कदे नहीं विचारिया भई कितने को सफल होए हन कितने को असी तंदियां विच उजाड़ दिते हन साडी हट्टी लुटी जा रही है श्वास जाया जा रहे हन पर असी बेखबर होके विचर रहे हां इसलिए हजूर बख्शिश कर दे हन भाई तू जाग ए जितने तेरे पसारे हन किसे काम नहीं आन वाले मनुख ने दो प्रसादे छकने हन वस्त्र पहने हन और रहना है इतनी को लोड़ मनुख दी है पर पसारे कितने पसारी बैठे हैं।

मन दा गुलाम होयो तां साडे मन दे साडे गुलामां दा गुलाम ही तू होयो ना। जिन्हां ने अपने मन नू गुलाम बना के चंगे पासे मन नू लाया, आत्मा नू कीर्तन दा भोजन दिता है, वो सदा लई अमर हो गए। जिवें भाई साहब कहंदे ने कि गुरमुख हमेशा जीते हैं, मरते कभी नहीं वो, जिनकी जुबां पे हरदम सत